दोबारा आएगा डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन डन

आइए एक बार इंट्रो करते हैं, यहाँ से करते हैं। गोलू जी आपका ही पार्ट है, बगल बच्चा आइए।

आइए एक बार साइन तक पूरा कर लेते हैं स्टार्ट से। जी वहां से ओके रेडी सब। वन टू

आइए एक बार साइन तक पूरा कर लेते हैं स्टार्ट से। जी वहां से ओके रेडी सब। वन टू

0: डैड।
1: राहुल कैसा है बेटा? एवरीथिंग फाइन?
0: एवरीथिंग फाइन डैड। इनफैक्ट बहुत खुश हूँ मैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम।
1: हे आर यू इन लव?
2: तू ही मुझको बता दे।
0: हाउ डू यू नो?
1: मेरा बाप साले। When the son is in love, the father just knows.

0: सर्जन। वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: अंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शकर शकर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker
1: heart beat

आइए एक बार इंट्रो कर दें, यहाँ से कर दें। गोलू जी आपका ही पार्ट है, बगल बच्चा आइए।

आइए एक बार साइन तक पूरा कर लेते हैं स्टार्ट से। जी वहां से ओके रेडी सब। वन टू

आइए एक बार इंट्रो करते हैं, यहाँ से करते हैं। गोलू जी आपका ही पार्ट है, बगल बच्चा आइए।

आगे नहीं जाना, यहीं तक, यहां से गाना उठेगा। गाने साइन सुन लीजिए। बस बस बस आगे नहीं जाना, यहीं तक, यहां से गाना उठेगा। गाने साइन सुन लीजिए।

आइए एक बार साइन तक पूरा कर लेते हैं स्टार्ट से। जी वहां से ओके रेडी सब। वन टू थ्री फोर।